जिस पर अरे वो फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंगों न वखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रो तजा शेह बाके मुग अब्बा पाप दें बन्यो कई अमल फी की तू बा इतालिया उस दाला